0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इन नमक अन्वेषिच कंडेतील। ഈ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി പി ഭാസ്കരൻ രചിച്ച് MS ബാബുരാജ് സംഗീതം നൽകി. യേശുദാസ് പാടിയ ഗാനം കേൾക്കാം.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, 1961 മുതൽ 1970 വരെയുള്ള ചില ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗാനോപഹാരത്തിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി കമുകര പുരുഷോത്തമൻ പാടിയ ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. ജ്ഞാനസുന്ദരി എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി അഭയദേവാണ് ഗാനരചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനത്തിന് ഈണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാമൂർത്തി.

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब

0: पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ആകാശവാണി അനന്തപുരി FM 101.9. പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാം. ആദ്യം ജോണി വാക്കർ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി എസ് ജാനകിയും സംഘവും പാടിയത്. രചന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, സംഗീതം എസ് പി വെങ്കടേഷ്.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ആകാശവാണി അനന്തപുരി FM 101.9. പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാം. ആദ്യം റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി സുജാതയും മധുബാലകൃഷ്ണനും പാടിയ ഗാനം. രചന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, സംഗീതം വിദ്യാസാഗർ.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ തുടരുന്നു. വേട്ടയാൻ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി മലേഷ്യ വാസുദേവനും യുഗേന്ദ്രനും പാടിയ ഗാനമാണിനി.

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम कुछ खास करने वाले हैं। क्या होगा वो खास, चलिए आपको बताते हैं। प्रौद्योगिकी, यानी कि आज जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। प्रौद्योगिकी ने हमारी जिंदगी को नए रंग और नई रफ्तार दी है। रेडियो की कहीं मधुर आवाज है तो कहीं मोबाइल की दुनिया, टीवी की चमक है कहीं तो कहीं सेल्फी का नया अंदाज है। तकनीक अब हर रिश्ते और हर एहसास का हिस्सा बन चुकी है। प्रौद्योगिकी दिवस पर सुनिए कुछ ऐसे ही गीत जिनमें इन आधुनिक शब्दों की दिलचस्प झलक सुनाई देगी। तो चलिए आगाज करते हैं पुराने समय से, फिर धीरे धीरे लौटेंगे नए समय तक। तो दीजिए सुनवाते हैं आपको पतंगा फिल्म का गीत। शमशाद बेगम और चित्तालकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे हैं, सी रामचंद्र का धुन, और इस फिल्म का नाम पतंगा।
1: गुण से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, समीर की रचना है। लीजिए सुनिए ये गीत।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैच टच।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। चलिए अब अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म रोबोट से। इस गीत को गाया है राग्स योगी बी, मधुश्री, तन्वी शाह और कीर्ति सगाठिया ने। स्वानन किरकिरे के बोल हैं और धुन बनाई है एआर रहमान ने।

सनम तेरी कसम। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, ड्रीम गर्ल। इस फिल्म से जॉनी टागांधी और मीत ब्रोस की आवाजें हैं। इस गीत को संगीत से सजाया है मीत ब्रोस।

0: और अब आपको सुनवाते हैं साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कौसर मुनीर ने। हिमेश रेशमिया, कीर्ति सगाठिया और पलक मुछाल की आवाजें हैं। फिल्म का नाम जय हो।
1: झटपट पर उलट पलट नटखट जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा।
2: ए छोरा गांडो

0: ये जवानी है दीवानी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं।

करण सहबी की आवाज में सुनिए लुका छुपी फिल्म का ये गीत। निर्माण ने इसकी रचना की है और धुन बनाई है तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुब्रत सिन्हा का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, आवाज और धुन हिमेश रेशमिया की, फिल्म का नाम रेडियो।

विशाल ददलानी और नक्श अजीज और प्रीतम की आवाजों में सुनिए बोल है मयूरपुरी के प्रीतम की धुन। फिल्म का नाम बजरंगी भाईजान।

प्रौद्योगिकी दिवस के इस खास संगीतमय सफर में बस इतना ही। रेडियो, मोबाइल, टीवी और सेल्फी जैसे आधुनिक रंगों से सजे इन गीतों ने उम्मीद है आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। फिर मुलाकात होगी नए अंदाज और नए गीतों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर आज आप तय कर रहे हैं नेहा आगरकर देसाई के साथ। स्वीकार करें नमस्कार। साथियों, इबारत तो आपने पढ़ ही ली होगी। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। यदि कोई ऐसे श्रोता है जो फेसबुक पर नहीं है और उन्हें आज की हमारी इबारत नहीं पता है, तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। अच्छा, एक बात पहले और बता दूं कि इबारत जिन लोगों ने पढ़ी भी है और कमेंट्स किए भी हैं, उनमें लगभग सारे शब्द आ गए हैं, लेकिन एक शब्द है जो नहीं आया है अभी तक। एक नहीं बल्कि दो ऐसे शब्द हैं। तो एक बार जरा इबारत को ध्यान से पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक। हो सकता है कि जिसे आप शब्द ना समझ रहे हो वो शब्द हो। इसमें कोई भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, नाम, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से पहचानना है आपको और एक बार मैं पढ़ देती हूँ ये इबारत आपके लिए। सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहाँ होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरते हैं, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैंने जोर दिया है थोड़ी सी हिंट देने के लिए, ताकि जिन शब्दों को अभी आपने नहीं लिया है उन शब्दों को भी आप सोच सकें और महसूस कर सकें और जान सकें कि वो शब्द कौन सा हो सकता है। वैसे तो एक गीत था जो शुरू में मैंने लगाया था, मगर जब मैंने देखा कि वो शब्द तो अभी तक आया ही नहीं है, तो सोचा एक हिंट दे दी जाए और तब तक कोई दूसरा गीत सुनवाया जाए। और बिल्कुल आप लोगों ने जो दूसरा गीत है वो सही पहचाना है। लीजिए सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। सफर, जी हाँ, यही शब्द है जो इस गीत में सुनने को मिलेगा।
1: एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक

तो रुझान आना शुरू हो गए हैं, मगर हम थोड़ा और इंतजार करेंगे ताकि हमारे सभी श्रोता इन जो जो, जो दो सवाल दो शब्द जो बाकी हैं उनका अंदाजा लगाकर हमें कमेंट कर सकें। एक साथी ने लिखा है, सभी श्रोताओं को प्रणाम। सुरीला सफर के लिए पूरा समय विविध भारती दे रही है, ये एक अच्छी बात है। हम इबारत को बार बार पढ़ सकते हैं और सोचने समझने का पर्याप्त समय है कि हमारी पसंद कुछ न कुछ टैली कर ही जाए। जी हाँ, कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं कि आज तो इबारत बहुत ही जल्दी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट को जल्दी करने की पीछे वजह यही होती है। अगर जल्दी पोस्ट आ जाती है तो उसका यही कारण है कि हमारे श्रोताओं को आराम से समय मिल सके। सुबह की भाग दौड़ होती है, तो अगर सुबह के काम करने के बाद जब बीच में थोड़ा समय मिले तो आप उस पोस्ट से इबारत को पढ़कर और फिर अपने शब्दों का अंदाजा लगा सके। देखिए, मजाक भी करते हैं हमारे साथी। एक साथी ने लिखा है, सुरीला सफर की पोस्ट रात 12 बजे तक नहीं थी, फिर आधी रात को आई। उत्सव फिल्म की तरह मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, बेला महकारी महका आधी रात को। क्या बात है, आप भी मजे ले रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, चलिए अगला भी जो शब्द है काफी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये गीत है परिचय फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

चलिए, एक शब्द का कयास तो आप लोगों ने लगा लिया है, बिल्कुल सही सही, और वो शब्द है चलिए एक बार इबारत को फिर से पढ़ देती हूँ ताकि दूसरे शब्द का अंदाजा लगाने में भी आपको आसानी रहे। तो इबारत है, सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहाँ होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ, अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। चलिए देखते हैं आप दूसरे शब्द का अंदाजा लगा पाते हैं या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तो और तब तक चलिए आपको सुनवाते हैं गीत। देखिए, बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि जो दूसरा शब्द है वो हमिंग वर्ड हो सकता है। किसी ने लिखा है, मैंने शब्द से शुरू होने वाला गाना लिखा है, हम तेरे बिना जी ना सकेंगे। किसी ने लिखा है, आज शायद हमिंग से कोई भी गाना सुनाया जा सकता है, हमिंग वाला दीवाना हुआ बादल, कह दो। इस तरह के कई सारे गीत इन्होंने हमिंग वाले लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है, जो गीत सच में बिल्कुल सही निकला है। लीजिए आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की का संगीत।

यहीं पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

0: न था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई एक अजनबी।
1: जिंदगी के इस शोर शराबे में सुरीला सफर महज आवाजों का मेल नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। हमारा मन उस बहती नदी की तरह है जिसे किनारों की बंदिशें रोक नहीं सकती। ये तो अपनी ही धुन में कभी यादों के भंवर में उतरता है तो कभी सुकून के साहिल को छूता है। जैसे नदियां आजाद होकर सागर की ओर बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही आप भी नेहा के साथ अपनी कल्पनाओं की कश्ती को तैयार कर लीजिए। चलिए आज एहसासों की लहर पर सवार होकर रूह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां सिर्फ सुकून और सुरों का बसेरा है। ये कमेंट हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, आज का सुरीला सफर की पोस्ट बिटिया नेहा बड़ा मन बनाकर लेकर आई है, वो भी निर्धारित समय से कई घंटों पहले, क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके। हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये विषय से जुड़े गीत, ये प्रसारण तरंगे हमारे दिल को चुराए, हमको लुभाए। मन कहे क्यों न मैं गाऊं, क्यों न मैं जुड़ जाऊं सभी मित्रों को, और मेरे लिए भी इन्होंने लिखा है, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। तो जी हां, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो अगला गीत है उसके बोल, मतलब वही जो शब्द आपने पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना है, शब्द है मन, और ये गीत भी कई लोगों ने सही पहचाना है। सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

मन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, मन प्रसन्न हो तो छोटी सी बात भी खुशी दे जाती है, लेकिन जब मन उदास हो तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन थक जाए तो थोड़ी शांति, थोड़ा संगीत, कुछ अपनों का साथ, खुद से बातचीत बहुत सुकून देती है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क को साथ लेकर इंटरनेट से भी ज्यादा तेज दौड़ लगाता है, जिसके लिए ये पूरा ग्लोब भी छोटा है। मन की दौड़ का कोई अंत नहीं। बहरहाल आज भी नेहा जी के साथ सुरीला सफर सुहाना ही होगा। जी हाँ, तो मन की जो दौड़ है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आंखें मीचिए और सोचिए किसी दूसरे ग्रह के बारे में, तो आप बस वहीं पहुंच जाते हैं। तो मन को कहीं भी जाने के लिए बस पलक झपकने का समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, अगला गीत और अगला शब्द भी जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है बंधन। तो सुनिए इस गीत को। करण अर्जुन फिल्म से कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। और आप बताइए, बंधन में होना कैसा लगता है? बंधन किसी भी तरह का हो सकता है, वो बंधन अच्छा भी बुरा भी। आप क्या समझते हैं बंधन से और आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो हमने बात की थी बंधन की, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अर्थ ये कोई जंजीर, डोर या प्रतिज्ञा हो सकती है। आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ में ये वो विवशता है जो इंसान को किसी परिस्थिति में रहने को मजबूर करती है। भावनात्मक संबंध या दोस्तों परिवार के बीच घनिष्ठ प्रेम और रिश्ते को भी ये दर्शाता है। एक साथी ने लिखा है कि बंधन एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की गहराई मानवीय भावनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और आध्यात्मिक चेतना तक फैली हुई है। साधारण शब्दों में कहें तो बंधन का अर्थ जुड़ाव या बंधना, लेकिन ये जुड़ाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बंधन स्वयं में बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे बंधे हैं। प्रेम का बंधन हृदय को विस्तार देता है, जबकि स्वार्थ का बंधन व्यक्ति को संकुचित कर देता है। एक साथी ने लिखा है, आपने बंधन का पूछा, तो बंधन अगर प्यार, विश्वास और अपनेपन के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंधन में हर कोई बंधना चाहेगा और बांधना भी चाहेगा, लेकिन बंधन अगर जबरदस्ती थोपे गए हो, जिम डर हो, एक अनिच्छ हो, वो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं, इतने कठोर, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंधों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंधों के, नहीं देखिए अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे, तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंधन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वहां से कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना सकें, क्योंकि ऐसे बंधन हमेशा तकलीफ ही देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने कहा कि बंधन प्रेम का हो तो अच्छा लगता है। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शब्द पंछी।

0: दिल से मेरे लहर उठे ठंड पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के तुम।
1: संयोग देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोकझोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं हैं। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
2: सुनिए,
3: कहिए,
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
4: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002।

शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हो तो जल्दी से निकल जाते हैं, और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का कांटा चल रहा है, तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का कांटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकले तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन का संगीत।

कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी विशेषण, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तोसे नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने, इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूं, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है, सुरीले सफर में नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूं। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना बेबाक परिंदा।

दा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना। सफर तो जारी है, इस हर पल हर मोड़ पर कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना। जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी, तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत कर रहे हैं सोलवा साल फिल्म के इस गाने से, आवाज मोहम्मद रफी की। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है सचिन देव बर्मन ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से और अब आपको सुनवा रहे हैं कौन अपना कौन पराया फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल और रवि का संगीत।

एक खूबसूरत वादे के साज पर जिंदगी का गीत गुनगुनाता ये गाना आपने सुना कौन अपना कौन पर आया फिल्म से। और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी का लिखा गीत नौशाद का संगीत। फिल्म है दिल दिया दर्द लिया, लेकिन इस गीत के पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: कोहरा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल हेमंत कुमार का संगीत था।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आशा भोसले का गाया हुआ साहब बीवी और गुलाम फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शकील बदायूनी ने लिखा था और हेमंत कुमार ने संगीत से सवारा था। लीजिए अब सुनिए ये गाना।
1: जरा नजरों से कह दो।

एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी का गीत और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम मुझे जीने दो।

हर कालखंड में दिल को दीवाना बनाता ये गीत सदाबहार गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आपने सुना महल फिल्म से। आनंद बख्शी ने लिखा और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की। और अब आपको सुनवा रहे हैं एक और अमर गीत, नीरज का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।

दीवाना बनाने वाला ये गीत तेरे घर के सामने फिल्म से आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और एसटी बर्मन का संगीत। आइए अब सुनते हैं ये गाना।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: प्यार का राग सुनो रे, ओ दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो।
1: सदाबहार नगमे प्रोग्राम का आखिरी गाना आपको सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल और एस टी बर्मन का संगीत।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी, क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई, रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं, क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए, लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं, और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है, या आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही।
1: बिल्कुल।
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं, गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: रहती
2: है, तभी निकलती है। तो हमसे जितना हो सके, हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह के छपरा बना दिया जाता है जहां भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं, और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर पक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
2: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है, कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें, कि पॉलिथीन वगैरह, प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें, या कचरा जहां डालते वहां डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें, और पशुओं का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर
1: क्या बात है,
2: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
2: नहीं नहीं,
1: है ना, तो ये गलत बात है ना,
2: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे, अगली बार खिलाएंगे, है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे, और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।
3: जे हम तुम चोरी से बंधे

0: हाँ तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था, और वैसे देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं।
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना,
0: बिल्कुल
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे मुंह सुनाई देते हैं, लगता बस एक बार नाची लो
0: नाची लो, तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।

0: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पांथे, उपेले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है, मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया, कितना ही उबालो न कहीं मलाई का पता न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था, शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही किया। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो, आठ आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा, आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है इतना खराब दूध, ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता, वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती, क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना, रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे, ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं, मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, श्रीहन आंखों में धूल झोंकेंगी, और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया, मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया, गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है, उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दुह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही भी आई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
0: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा, जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था, लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी, जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
2: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
0: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार 1-2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गौ की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था, लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था, लेकिन ये तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे, कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है, जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था, घर से तो ले जाए लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी, उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
3: बाबूजी इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांदी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
1: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही, और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
1: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासन पूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
1: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने, गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
0: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
2: अरे साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
0: मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
2: देखिए मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
0: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा? चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
3: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्म गौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
3: ये पत्तियां कहां रख जाऊं?
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
3: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
5: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार अंत में, जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं। ये सोच करके ये आसान होगा, परिणाम बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लेकर दीजिए इन्होंने।
6: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु है जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है, यहां से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
0: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था
1: जी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी।

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आजादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है। जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहां एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है। आप खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने देखा है, अपने

0: कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
1: उनकी डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे, और रूठना मनाना तो चलता
0: ही था।
1: रिश्तों में क्या होता है, जब वो कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में भी खटास
0: आती है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं समझती हूँ अगर दोस्ती में खटास आती है तो कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब दोस्ती में खटास आती है, वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्ती रहते हैं। जहाँ दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ मन में कुछ था। वरना आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम बात करती हो ना, क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
1: बिल्कुल, सौ की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
0: आप नहीं निभा पाओगे,
1: दोस्ती नहीं
0: निभा पाओगे।
1: तो हमारी
0: दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है, मंजरी
1: है।
0: मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते, जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं। लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है। और बहुत अच्छी बात है, जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने कहां गए।
0: सही बात है, कुछ मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप कहाँ रहती हैं, आप वही मंदाकिनी है
1: हमने
0: जो कभी साथ पढ़ा करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी,
1: जी,
0: है ना,
1: बिल्कुल सही बात।
0: वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है,
1: कुछ भी नहीं। अगर वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ
0: समझ लिया। तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए तो समझ लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधनकारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।
0: बिल्कुल, मैं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं। बिना शर्त स्वीकृति के दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं, परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिससे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है, जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार होता है। इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: तो
1: हाँ तो मंजरी बताइए,
0: हमारे
1: दोस्ती में और क्या क्या होता है?
0: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं, तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं,
1: है ना? मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते हैं
0: भाई, देखते
1: मुझे
0: हैं,
1: तो लगता है दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं है।
0: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते हैं।
1: मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
0: देखती हूँ, चलिए ठीक है कर लेंगे। और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह? मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
1: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहां वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर,
1: बिल्कुल सही। और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता है।
0: जी,
1: है ना,
0: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग सुनते हैं,
1: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तमन जी भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें की। दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है। तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठकर खाते हैं तो कितना मजा आता है ना।
1: जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे दाल पीठा और सत्तू का शरबत। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, हम उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगोकर लहसुन मिर्च के साथ पीसकर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का

0: तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा, और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही है चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
1: नहीं आप पढ़िए ना, क्या कह रही
0: हैं कि सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना, मसूर, मक्का, जौ होता है, जिसे लोग खाते हैं। सत्तुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो हमें पता चल गया कि हम
1: दोनों में क्या फर्क होता है। हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
0: क्या बात यानी आप इतने से ही निकल ली
1: तो अगली बार आप मेरी अच्छी दोस्त है ना
0: जी,
1: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली हैं। ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त अब पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दूसरा आदमी, अभी आपने इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुना। संगीत राजेश रोशन का था, बोल मचरू सुल्तानपुरी के। लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा गीत, आवाजें सोनू निगम, कमाल खान और जसविंदर नरुला की। फिल्म का नाम हेलो ब्रदर।

थे सोनू निगम, कमाल खान और जसविंदर नरुला। फिल्म थी हेलो ब्रदर। अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को, रचना रविंदर रावल की, संगीत बाबुल बोस का। फिल्म का नाम जीना तेरी गली में।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अब सुनिए समीर का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने, आवाजें सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की, फिल्म है बादल।

आ गले लग जा। अब सुनिए इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को साहिर लुधियानवी के लिए इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

ये देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने। ये गीत है सोल्जर फिल्म से, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने, बोल लिखे समीर ने, आवाज सोनू निगम की।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर।

0: साथ ही तराने महतराने कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।